0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल कैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: Namaste. अरे अपनी फेर आवे रे मेरी प्यारी बुढ़ी मेरी उम्र चुनकिरी बिचारा अलसम मले बात पर ही बसी रोले मो बजे कस्तो खत्म छ भने दिल जाड जगर माचेर आगो कस्तो मलाई ला ओ पोस्टिगा मेरी बुढ़ी
1: बुढ़ी भन्दा रिसले
0: ओ डार्लिंग आई लव लव आई लव यू माई सातो पुतलो फ्लाइङ आफ्टर सी यु अङ्ग्रेजी बुझ्दैन तँलाई देखेर सातो पुतलो उठ्छ।

0: लहंगा चोली लगायत का कपड़ा सिलाई र रेडीमेड कपड़ा फिटिंग साथ ही सुपथ मूल्य में सिलाई संबंधी तालीम समेत प्रदान कर
1: प्रोपाइटर सबिना फुयाल थप जानकारी का लागि सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9860293426 9860293426
0: क्लासिक लेडीज टेलर्स चरीकुट सादो बाटो जेरी पसल सँगैको गल्लीबाट भित्र माथिल्लो बाटोमा महालक्ष्मी विकास बैंकको ठीक पछाडिपट्टि
2: यो रेडियो सैलुङको समय सूचक हो।
3: यति बेला साँझको 5 बजेको छ।

नमस्कार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 MHz बाट म पदर प्रसाद सापकोट आज विक्रम सम्मत 2083 साल श्रावण कृष्ण पक्ष सन् 2026 अगस्त 5 तारीख श्रावण 20 गते बुधवार सप्तमी तिथि अब स्तुति गरौं आयु द्रोण कुमार कैसरी आओ सक्षेण कल्पयारी

धर्म कुमार कैसर्य श्री ब्रह्म ज्ञान याने विदुर कैसर्य ज्ञान हवश सुजन मनुन बढ़ाले पने कृति उज्ज्वल सुत सहित का।